नानक कसम अल जाए हर खान नानक कसम अल जाए दबन दबा बरे गे गरे दबा दबा रे मदा दबा दबा बरे गे हर कृदा निधि दादन कृदा निधि दादन कृदा।

पार्स भेद पर्स करो पनदास को आस जगत गुरु की पार्स भेद पर्स करो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुर सिर हाथ तरे ओ कसुमल जाय हर

गुरु अमर गुरु की सत, गुरु अमर गुरु श्री सत, कल युग राखी पत, अग्नि देखत गत, चरण कमल दास, चरण कमल दास, सब विद्मान्यो मन, तभी पयो प्रसन्न, गुरु जोग तख्त दियन, गुरु रामदास, ना ये रामदास सरी, ना ये रामदास, ना ये रामदास सरी, दस सरी दस सर, ना ये रामदास सरी, ना ये रामदास, ना ये रामदास सरी, हम अब

सुत डारा सोप्रीत लगाई एक उत्तम पल सुनियो गुर संगत एक उत्तम पल सुनियो गुर संगत।

सुचे लाल नु जोरी फर्क सकते कीर्तन दे सोने लाल नु भाई गुरसिख परख दे तुसी परख रहे हो आकर ताही जुड़े बैठे हो पर मर्दानिया जिथे इस चीज की परख नहीं है उथे नहीं रहना चाहिए। महाराज मसा मसा एक चंगा स्टेशन आया थी ते तुसी उपराम ही हो गए ना मर्दाने इथे नहीं रहे बाबा फिर तुसी जाना तो जाओ मैं तो नहीं जावांगा खुशी भाई मर्दाने बचन मन महाराज फिर मन लवानगे चंगा तेज हजूर तुर पे मर्दाना पदार्था दे लालच आके गुरु तू गुरु नू जवाब देती है फिर लग गए हजूर तुरे कहन लगा महाराज अनवाकुफ जगह है आप अगे है तुसी लियांदा है उस दिन रह के जिथे कहोगे मैं आ जावांगा हुण इतनी कृपा तो करो भी दो चार टके तो रोज मिलन आखो श्री भाई हजूर कहने लगे मरवानी चंगा तो सी साढ़े नाल ही चलता पर तेरी मर्जी है पदार्था के लाल पीछे रहन लगा है जगह चंगी नहीं है अगे तेरी मर्जी महाराज तुसी चलो मैं आ जावांगा आखो श्री भाई चंगा मरदानिया टके तो तेन मिल जाने कीर्तन जो करने वाला हजूर चले गए ये मरदाना शहर च आ गया गुरु के बचन द्वारा चार पांच टके रोज मिल जाते हैं फिर कदे जलेबिया कदे मालपूड़े कदे बदाम कदे घ्यो ही छक लेंदा या खुशी थोड़े समय के अंदर ही मरदाना मोटा था खुराक जो चंगी मिल गई। एक दिन अचानक ही प्यारी सात संगत किसे दा मकान डिग पिया मकान दे हेठा एक आदमी आके मर गया जिन्हां दा आदमी मरिया सी उन्होंने जाके बादशाह को फरियाद की थी बादशाह सलामत साडा आदमी मर गया भी किस तरह मरिया है फलां सेठ दे मकान दे हेठा आके मरिया ओ मकान डिग पिया। बादशाह ने कहा फिर जिसका वो मकान है ओनू फांसी चाड़ देवा खुशरी वाह सेठ नू हथकड़ियां लग गईयां पेश कीता इसने किया भी की गल है मैनू फांसी क्यों चाड़ दे बादशाह ने कहा इस वास्ते तेरा मकान गिर गया है ओ मकान गिर गया है इतना आदमी आके मर गया इस वास्ते इस दरा चाहता से कहन लगा बादशाह सलामत ये मेरा कसूर थोड़ा ये तो कारीगरां दा कसूर है जिन्होंने मकान कमजोर बनाए लेबर तो मैं पूरी दिती है उन्होंने मेहनत तो पूरी दिती है ये मेरा कसूर नहीं। बादशाह ने कहा ठीक इस वास्ते जिन्होंने मकान बनाया ना कारीगर ने उन्होंने फांसी चढ़ इसलिए उन्होंने पकड़ लिया वह कहन लगे बादशाह सलामत साडा कसूर नहीं ये तो मजदूरों का कसूर है जिन्होंने मसाला टाइम नाल नहीं पहुंचाया सीमेंट ईटा गारा इस वास्ते मकान कमजोर रह गया डिग पिया बंदा हेठा के मर गया। बादशाह ने कहा चंगा फिर मजदूर नु फांसी चढ़ दे जिसने मजदूरों पेश किया आकड़ियां लगी हैं यह कहन लगे बादशाह सलामत एक साड़ी अरदास कहो भाई कोई फरियाद है तो कर लो कह लगे साडा कसूर नहीं क्यों भाई मकान डिग गया तुसी मसाला नहीं टाइम नाल पहुंचाया बंदा मर गया कह लगे साडा कसूर नहीं जिथों असी मसाला चुके सीमेंट वगैरा तगारी च रख के सिर पे आउंदे सा रस्ते विच एक वेसवा मुजरा पे करदी सी गाउण वाली ते असी उत्थे खड़ो जांदे सी इस वास्ते मसाला लेट पहुंचा सी मकान कमजोर रह गया डिग पिया बंदा मर गया साडा कसूर नहीं। बादशाह ने कहा ठीक है भी ये सच्चे है ना फिर वेसवा नू फांसी चढ़ वापस श्री वाहे इसलिए उन्हू बुलाया अकड़ियां ला लिया बिचारी ने पेश किया तेरे क्या मेरा की कसूर है सारी मिथ्या दसी इसने अगे कोई जवाब नहीं सी आखो श्री वाहे एदा कोई जवाब नहीं सी पर जिसले फांसी वाला रस्सा एदे गल पाण लगे एदे गर्दन सी जरा पतली ते ओ गण सी जरा खुली आखो श्री वाहे ओ एदे गल विच ना आवे जलादा ने कहा बादशाह सलामत एदे गल च रस्सा नहीं आउंदा बादशाह कहण लगा जेदे गल च आउंदा उहनू फांसी चाड़ो आखो श्री वाहे ए हुकम दी तमीर करन वास्ते जेदे बादशाह दे पुलिस दे बंदे सन ओ तुर पए वी उह जिहा मोटा ताज़ा किधरों लभे प्यारी सात संगत पुलिस के बंदे जा रहे सन ते अगे मरदाना हलवाई की दुकान से बैठा हुआ मिठाई पिया खांदा सी जाके पुलिस वाले ने कहा भी तू कौन है।

मस्तक पाग मन मुख छुटड़ कामनी गुरमुख सुहाग। गुरमुख उजल हंस है मन मुख है काग। मन मुख उदे कमल है गुरमुख सो जाग। मन मुख जो

जद गंडी सतवट ए जनेऊ जी का है ना पांडे कत ना ए टुटे ना मल लगे ना ए हो जले ना जाए तन सो मानस ना निका जो गल चले

लख ठगिया पहना मिया रात दिन सी नाल तग कपाहुं कतिये बामण वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए वो एक प्राणा छुट्टिए।

जेकर सूतक मनिए सत्य सूतक होय, गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होय, जेते दाने अनेके जिया बाज न कोय। पहला पानी जियो है जितहरिया सब कोय, सूत क्यों कर रखिए सूत।

तो भी नहीं पुत्र तरह ना करता ना कर हार के तुर गया है। मैं बड़ा दुखी सिख ने किया गंगा राम रो ना काबर ना गुरु भली करेगा। गंगा राम कहने लगा किस तरह भली करेगा, तेन माया चाहिए है ना। हाँ साहब जी कलयुगी जीवा के उधार करने वास्ते बावली साहब का तीर्थ रच रहे हैं, वे किस तरह संगत सेवा कर रही है। फिर दो तरह सेवा हो रही है, गंगा राम एक निष्काम सेवा है एक साकाम सेवा। साकाम सेवा जे करेगा तो एक अठियानी रोज मिले तो दो बड़े का प्रशादा लेंगे, तो जे निष्काम सेवा करें तो पता नहीं धन गुरु अमरदास पातशाह तेन की देगी। यह तेरी मत साकाम सेवा कर रही है या निष्काम सोचन कि सेवा साकाम सेवा ना रठियानी मिलेगी। जिन्हें लखां गिने उन्होंने वास्ते अठियानी की चलती तो सोचा मना चलो साकाम सेवा कर दे या की पता गुरु कृपा कर ही दे। सेवा कर तो होए जिसको हो प्राप्त असी तो साकाम सेवा कर दे। गुरुद्वारे की मत्थे टेक दो, पातशाह पुत दे दो, माया दे दो, कारोबार दुनिया दे दो, गुरु दे दें। और बाबा जी बचन कर दे सब भागा वाला गुरसिख है जो निष्काम सेवा और उसाई में मैं भी गंगा रामा फिर सेवा कर दू। फिर लंगर ही चला जाए झूठे भांडे मारने शुरू कर। फिर पहली सास गंगा राम लंगर ही चला गया, रात दिन सास संग झूठे भांडे मारने। कदे कदे मन ख्याल आ जाता है मन गुरु नाल कोई बचन ही नहीं है, दर्शन ही कीते कदों भागा वाला दिन आएगा जो गुरु मेनू दर्शन देवेगा ते अपनी रसना तू कवेगा गंगा राम तेरी सेवा परवान है कुछ मंग ले। वो दिन खड़ा पर रात दिन सेवा करी जाता है, किसी वेले मन निराशा वाल भी चला जाता है, पर फिर गंगा राम अपने मन को समझाता है मना गुरु समर्थ है अंतर जानी ढिला ना पै सेवा करी जा। फिर कदे ना कदे नाड़े भांडे मांगता है नाड़े गंगा राम

कोई रोज रोज नहीं मिल सकता। सेवा मिल गई है पर तरी है तदे तो मार्ग मक्ष गंगा राम रात दिन भांडे मांझी जाने ते गुरु के दर्शन की उड़ीक रात दिन उड़ीक करता है कदों भागा वाला दिन चलता तन गुरु अमरदास पातशाह जी के दर्शन गुरु बख्शिश कर जिस तरह बख्शिश हो रही है गंगा राम की सेवा थाए करा शामा क्योंकि कहीं ने इशारा किया समा सुख की घड़ी का पता ही नहीं आखो सी दुख की एक घड़ी आ जाए तो चीज नहीं आ पता ही नहीं लगे किस तरह समा यही है मालिक धन गुरु अमरदास पातशाह जी आप सारे गुरु मार्ग ने बेहती की तो आप जो सेवा मिल जाए गुरु का जी करो ते इस उड़ीक आप शामा तक इंतजार करिए पता गंगा राम दे सदके सानू ही दीदार का किरका मिल जाए फिर साडा कीर्तन कीता सुनिया पर गुरु का भी किसी की कामना जाया नहीं जिसने भी तन तन मन धन न जिसने भी सेवा की थी है हजूर फरमाते जान के सिमरन सब कुछ पाइए बिरथी उसी भी कालना कर अपनी कालना भी गंगा राम की कालना किस तरह गुरु ने अमृत साढ़े टाइम साढ़े शेर का कीर्तन आशा जी अमृत वेला सच ना वड़ियाई ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀ ਕਰੇ ਕੱਲ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਸ पूर्णमासी ऐसी पूर्णमासी आई रब प्रगट हो गया खुश रही बाबा ने समझी उसे चौबी घंटे का सत्संग है डेली कोई आए चाहेगा पर पूर्णमासी का समाज खास होता है नॉर्थ इंडिया में हो बाबा जी की बख्शिश द्वारा नानक सर हाजरी भरता ऐसी साई की प्रेरणा अनुसार पूर्णमासी थोड़े को जुड़े हुए थोड़े दर्शन करके मैं भी उस पवित्र पावन याद हिरदे च वसावगा सुरत नानक साहब पहुंचा के दर्शन कर तो पूर्णमासी आप आओ गंगा राम जी साखी सुन के अपना जीवन सफला करो जिस गुरु ने सानू ये दात बख्शी ओदा शुकराना अदा करिए यही अरदास करिए पले अमरदास गुरु तेरे तेरी तेरी रहमत है मेरे पातशाह नहीं तो असि कलयुगी जी थां थां ते कलयुग रुकावटां पे पाए माया कई रूप धार के भी छलदी किथे आए अजे आ गए मार्ग दे दारू प्राप्त करके गुरु नु पा गए आखो सही गुरु नु पा गया सारे मिल के करी उस तो प्राप्ति करी धन गुरु नानक पातशाह आप जी ने करम करम सारे गुरसिख माई पाई धन गुरु राम दा अमरदास पातशाह जी आप जी का आगमन गुरपुरब मना
ਬਖਸ਼ੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਦਰ ਵਜੋਂ ਪਾਉਂਡ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੰਤਰ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ

सुजला संचौरासी ए भी कर कर रहा बढ़ियाड़ जा फिर जल में हर्षो संग न जहा राजलीला राजन की रचना करया हुकुम अपारा सृज कौन चंदन चोला नाक खोर का द्वारा हर तीर्थ

राग गौड़ी बैरागण विच ऋषभ धैवत कोमल दोवें निषाद अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस राग विच गंधार ते पंचम वर्जित हैं। इस दी जाति औड़व वादी ऋषभ संवादी धैवत अते समा सवेर दा है। मैं बंजारन राम की शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।